मुझे समझ न प्यारे, मुझे समझ न प्यारे, बोली बोली मैं हो सकी नानी। जा दिल भर जानी, जा दिल भर जानी, अरे जा जा जा जा जानी।